0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

चखावे। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पिंजरे को देखा है जिसमें तोते को पकड़ा जाता है? उस पिंजरे में एक घूमने वाली डंडी होती है। जब तोता उस पर बैठता है तो वह डंडी उलट जाती है और तोता डर के मारे उस डंडी को ही और मजबूती से पकड़ लेता है। तोता सोचता है कि इस डंडी ने उसे पकड़ रखा है, जबकि सच यह है कि तोते की ही अपनी ही पकड़ ने उसे कैदी बना रखा है। अगर वह अपनी पकड़ छोड़ दे तो वह उसी पल आज़ाद आकाश में उड़ सकता है। हम सब इंसानों की हालत भी आज उस तोते जैसी ही है। कबीर साहब आज हमारी इसी पकड़ का सच हमारे सामने रख रहे हैं, जिसे हम अज्ञानवश मेरी मेरी कहते हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम सत्य का दार्शनिक सूत्र। मैं मेरी जिनी करें मेरी मूल बिनस, मैं मेरी जिनी करें मेरी मूल बिनस, मेरी पग का पैंशना मेरी गल की पास।

0: आस। श्रोताओं, कबीर साहब हमें इस मुक बंधन से सचेत करते हुए कहते हैं, मैं मेरी जिनी करें। तुम 24 घंटे जो अपने जीवन में मैं और यह मेरा है, वह मेरी है कि रट लगाए रहते हो, इस रट को तुरंत बंद कर दो। मेरी मूल बिनस, क्योंकि यह जो मेरी का भाव है, यह जो ममत्व है, यही तुम्हारी बर्बादी का मूल यानी असली जड़ है। जब तक यह भाव रहेगा, तब तक तुम्हारी भीतरी चेतना का विकास पूरी तरह रुका रहेगा। इस बंधन की गहराई को समझाते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, मेरी पग का पैंशना, यह जो मेरा मकान, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा का भाव है, यह और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे पग यानी पैरों की पैंशना यानी लोहे की बेड़ी है, जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने ही नहीं देती। मेरी गल की पास और यह जो मेरे सगे संबंधी, मेरा परिवार का अंधा मोह, यह तुम्हारी गल यानी गर्दन में पड़ा हुआ पास यानी काल और वासना का फांसी का फंदा है, जो तुम्हें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में घसीटता रहता है। यह दोहा अहंता और ममता के दार्शनिक विश्लेषण का शिखर है। भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि केवल मैं ही दुख नहीं देता, बल्कि मैं के साथ जो मेरा जुड़ जाता है, वह जीव को संसार से बांध देता है। जब तक मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा मानता है, तब तक उसके भीतर भय, क्रोध और ईर्ष्या का जन्म होता रहता है। कबीर यहाँ यह समझा रहे हैं कि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यह भी मिट्टी का है। जब सब कुछ यही छूट जाना है, तो फिर इस मेरी के जाल में फंसकर अपनी आत्मा का गला क्यों घोटना? बुद्धिमान वही है जो इस पकड़ को ढीला कर दें। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी पकड़ को देखिए। जिन चीजों को हम मेरा मेरा कहकर छाती से लगाए बैठे हैं, क्या वे हमारी भीतरी तनाव और चिंताओं का कारण नहीं है? हम किसी झूठी मिल्कियत के अहंकार में अपनी आजादी को खो रहे हैं। आज कोशिश कीजिए इस मेरा की बेड़ी को काटने की। संसार की हर चीज का उपयोग कीजिए, प्रेम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन भीतर से इस भ्रम को विसर्जित कर दीजिए कि यहाँ कुछ भी आपका है। जब आप इस ममत्व के फंदे से आजाद होते हैं, तभी आप उस राम नाम के सच्चे अधिकारी बनते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र शाश्वत सत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव।

तथागता असित मुनि की भविष्यवाणी थी, तू बनेगा चक्रवर्ती सम्राट या बनेगा विश्व मानव कल्याण का उद्धारक, सम्यक संबुद्ध, तुझे रास नहीं आया ऐशो आराम का जीवन, तेरा नहीं लगा मन राजमहल नर्तकी शयन कक्ष में, उथला आनंद और क्षणिक सुख से गई दूर तेरी दृष्टि निब्बाण तक, उनकी आहट तेरे संवेदनशील मन ने कब की अनुभव कर ली थी, तेरा अंतस्थ तुझे बेचैन करता था सत्य अन्वेषण के लिए, मानव कल्याण के लिए, दुख की मुक्ति के लिए, तेरा प्रेम दया भाव करुणा प्रसारित हुई संसार में व्यापक स्तर पर, उसका आरंभ बिंदु प्रस्फुटित हुआ बाण पीड़ित पक्षी की व्याकुलता में, तूने करुणा भाव से घायल पक्षी को उठा लिया सस्नेह गोद में, तेरी काया का स्पर्श पाकर पक्षी पुलकित हुआ सहर्ष, देवदत्त का बाण निकाला पक्षी के तन से द्रवित होकर अपने कोमल कर कमलों से, दया भाव से तेरे नेत्रों में करुणा का उफान आया था, पक्षी ममत्व भाव से तेरी गोद में अपनापन पाया, देवदत्त ने पक्षी पर अपना हक जताया, तूने कहा यह मेरा, मारने वाले से जीवनदाता होता है बड़ा, वाद विवाद बड़ा, पहुंचा राजमहल में निर्णय हुआ और तेरी ममत्व से भरी करुणा विजयी हुई, आजाद हुआ पक्षी, खुला छोड़ दिया आसमान में तूने, तब तेरी करुणा दया प्रेम भाव के विविध आयाम स्फुरित होते गए विश्व के अस्तित्व का सत्य का विशाल प्रतिबिंब पाया तूने करुणा में, तूने हर्षित भाव से एक स्मित हास्य किया और तेरी खोज की यात्रा का आरंभ शुरू हुआ, लोक कल्याण की तीव्र सकारात्मक ऊर्जा पनपती रही तेरी करुणा की धार में और तेरे विचारों का विस्तार होता गया संसार में, बा तथागता पानी के बंटवारे से हिंसा न हो इसीलिए तेरे ही आंखों में करुणा का पानी बहा और तूने कहा, रोहिणी नदी के पानी बंटवारे के मसले पर शाक्य और कोलियों में युद्ध होना उचित नहीं, तेरे इस विरोध से भयचकित हुई सारी संघ सभा, बहुमत को तूने विरोध किया, इसी मसले पर तुझे होने वाली थी सजा, जब्त होने वाला था तेरा जमीन जुमला घर बंगला महल, या स्वीकार करना पड़ता तुझे देश त्याग, तूने देश त्याग स्वीकार कर लिया, परिव्राजक का मार्ग अपना लिया, बुद्ध तत्व दर्शन की दिशा में तेरे कदम बढ़ने लगे, जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना के साक्ष्य में देश त्याग के तेरे निर्णय से कपिल वस्तु भयभीत हुई, पिता पीड़ा से व्याकुल हुए, तुझ पर ममता की वर्षा करने वाले राजा शुद्धोधन, माता महाप्रजापति और नगरवासी बहुत व्यथित हुए दुखी हुए, पहले ही खबर पहुंच चुकी थी राजमहल में देश त्याग की, तूने गंभीरता से यशोधरा के पास जाकर कहा, माता यशोधरा ने कहा, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो यही करती, यशोधरा की अनुमति से तू निश्चित हो गया, दोनों के संवाद से विवेक ठोस सत्य की ओर बढ़ा और सिद्धार्थ के परिव्राजक का मार्ग गतिमान हुआ, पानी का प्रश्न चर्चा एवं समझदारी से हल किया जा सकता है, उसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं, यह आसान प्रश्न कठिन बना, फिर संपूर्ण जन कल्याण का प्रज्ञामय मार्ग तूने स्वीकार कर लिया, वही मार्ग जिसे तूने खोजना चाहा था।

0: दिल से सुनाओ रेडियो 1 भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आप लखानदेश, आप ली मानसर.
2: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आप सुन रहे हैं